0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: आज क्योंकि सुबह से सांपों की बातें हो रही हैं तो मुझे लगा एक आखिरी दाव यहाँ पर मैं भी लगाना चाहूंगी. Unless Antra can find another snake खबर. Well, this is Radio Masti 24/7, the no filter show. Masti madness.
2: Masti madness. जहाँ न्यूज भी होती है. Gas. How are these sneaking in? ऐसी खबरें कहाँ से आ रही है?
1: Sneaking in. Sneaking नहीं होगा. तुम्हें पता है अंतरा, एक आदमी चाइना में 6 महीने बाद काम के लिए गया था. 6 महीने ही वॉज ओवरसीज. ओके, एंड ही केम होम. अब घर आते ही तू सोच, मतलब मैं तेरे को अगर आज फोटोज दिखा दूं इसकी तो बहुत ही हिल के रह जाएगी तू. क्लस्टर्स ऑफ वाइट स्नेक एग्स उसके पूरे घर में. ओके, मतलब तू ये सोच, हंड्रेड्स ऑफ स्नेक एग्स उसके घर पे अरेंज नीटली ऑन एक पुराना सा ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर. मतलब इमेजिन, बात ये नहीं है कि चलो सांप घुस गया, सांप ने अंडे दे दिए. इट्स लाइक 15-15 अंडों का क्लस्टर बना हुआ है. 15 यहाँ, फिर थोड़े डिस्टेंस पे 15 और, फिर 15 और. इट्स लाइक हाउ, इट वाज जस्ट टू नीट, राइट? सो एवरीबॉडी वाज लाइक, इट डिडंट क्वाइट मेक सेंस टू पीपल, क्योंकि जैसे उसने वो फोटो डाली ऑन द इंटरनेट, दे सेड यार ये कैसे हो सकता है. इट सीम्स लाइक कोई स्नेक फार्म जो आसपास है उसने लाकर यू नो ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ये सब किया है. और यहाँ वो आदमी ने खुद ही रख के यू नो जस्ट टू बी पॉपुलर किया है, बिकॉज ठीक है, अनऑक्यूपाइड है, घर में कोई नहीं है, डैम्प घर है, वो स्नेक ब्रीडिंग सेशन हो सकता है. लेकिन अंडे गिन गिन के 15-15 सांप कैसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रख रहा है इतने प्यार से? हाउ, व्हाट डू यू थिंक?
2: दिस इज लाइक टू यूनिक फॉर मी. आई मीन मस्ती मैडनेस पे ऐसा, मतलब हम लोग उस स्टेट से बाहर निकल चुके हैं कि हम नॉर्मल चीजों के स्मगल और इनकी बात ही नहीं कर रहे. हम सांपों और इन सब चीजों में पहुंच चुके हैं कि लोग इसको भी ऑर्गेनाइज कर करके रख रहे हैं.
1: इट्स ओनली टू गो वायरल. क्योंकि दुनिया में अकेलापन बहुत है, इसीलिए रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. डियर मस्ती, दिल से. ट्यूजडे 5 बजे.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: कभी कभी ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ लोग आते हैं ना कि मतलब उनको कहने का मन करता है कि भाई एक काम कर, तू मत ही कर.
2: सही बात है भाई, तू मत ही कर.
3: This is Masti Madness on Radio Masti.
2: मुझे कुछ नहीं समझ आया इसने क्या बोला, लेकिन हाँ एंड में भाई तू मत ही कर. रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती मैडनेस. अगली खबर अंतरा जी. अंतरा क्या क्या कौन नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है बताओ.
1: ये रेडुकल वो वाली चीज कर दी. जब मुझे ना क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो मैं टीचर का लास्ट टू वर्ड्स पकड़ के वही रिपीट कर देती थी. बट देन कमिंग बैक टू दिस वन, भाई ये बंदी जो है इसको सिग्नल पे रोका गया. ठीक है, क्योंकि ये इस वजह से ये टर्न लेते वक्त शी वाज नॉट गिविंग इंडिकेटर्स. नाउ वी ऑल नो द वन हु डोंट ड्राइव आल्सो. सिंगापुर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास गाड़ी नहीं है, बट वी स्टिल नो कि भाई बेसिक कॉमन चीज है कि जब आप टर्न कर रहे हो तो आपने सिग्नल देना है और उसके बाद टर्न करना है.
2: बिल्कुल.
1: तो बहन को पकड़ा गया. अब बहन तो लॉजिक के साथ तैयार है, और वो होता है ना कुछ लोग आपको कुछ भी बोलेंगे बट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे. और वो कॉन्फिडेंस देख के आपको लगेगा कि भाई तू किस बात पे कॉन्फिडेंट है इतना.

0: मतलब कहाँ से आ रहा है ये.
1: Exactly.
0: So she gave the logic, ठीक है, कि डिफेंस में उसने कहा कि she never uses her turn signal because वो कहाँ जा रही है is nobody's business. वो टर्न करके जो फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, किसी इट्स नोबडीज बिजनेस. सो शी इज नॉट गिविंग दोस टर्न सिग्नल्स. फिर बहन को बताया गया कि बहन वो तेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर द पीपल, बाकी लोगों के लिए बहन.
1: दैट इज अ ट्विस्ट. But that's the whole thing. लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यार, थोड़ी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मैन परफेक्ट
0: ये लोग बहुत बहुत बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड है.
1: No pun intended.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन?
5: पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन?
6: क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले।
5: तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
7: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हाँ तो भाई, अब इस टाइम पर ना मैं खबर बताना चाहती हूँ अपनी पर्सनल जिंदगी से, विच इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक खबर. इट इज रियली फनी. सो व्हाट हैपेंड, आई मीन अ फ्यू डेज बैक, मेरे घर के सामने की जो लाइट्स हैं मेरे फेंस की, वो किसी ने आके तोड़ दी थी, सोलर लाइट्स, राइट?
2: ओह ये आई नो दिस वन. हाँ, यू वर वेरी वरीड दैट डे.
1: एग्जैक्टली. सो उन्होंने सोलर पैनल्स की लाइट्स तोड़ दी और उसके बाद में इधर उधर फेंक दी जो स्पॉट लाइट्स लगी हुई थी. आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज एवरी इवनिंग द लाइट हैज टू स्विच ऑन एंड इट डिड नॉट. देन आई रियलाइज this is vandalism, so I reported to the management. Management ne kuch nahi kiya. Maine unko bola cameras check karo. Mere apne khud ke bahar ka camera maine check kiya to mujhe wahan par do chote chote bacche kuch sirf nazar aaye, but karte hue kuch nahi nazar aaye, sirf khelte hue nazar aaye wahan par bahar. To maine kaha theek hai yaar, dekha jayega, but maine bhi choda nahi. Ab isi hafte mein maine पता फिर से लगाया तो मुझे मैनेजमेंट ने कहा, आई थिंक वी हैव फाउंड योर कल्प्रिट.
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी.
1: मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि भैया चोर पकड़ा गया है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि ये जो भी है अगला क्या कर सकता है, राइट? गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस. और वो निकला एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का. ऑलराइट. अब मैनेजमेंट ऑफिस को मैंने कहा, भाई ऐसा है कि आप प्लीज उसके पेरेंट्स को कहिए मुझसे बात करें, क्योंकि आप तो मुझे नंबर दे नहीं रहे हो. सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आगे से ये दोबारा नहीं होगा. दैट्स इट, राइट? तो फादर का फोन आया, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, कि नहीं मेरा बच्चा जरूर नॉटी है लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है. मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके. मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे कहा गया है कि तुम्हारा ही बच्चा है जो है भाई. तो मैनेजमेंट ऑफिस ने उनको जो भी कहा, वो काफी गुस्से में था, लेकिन उसने कहा कि जैसे मेरा बच्चा स्कूल से आएगा मैं उस बच्चे से पूछूंगा, और अगर ये सच है तो फिर आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारे पैसे जितना नुकसान हुआ है वो भी दूं, और साथ में मेरा बच्चा भी तुमसे माफी मांगेगा. मैंने कहा भाई इतनी कोई बात नहीं होगी, इट्स ओके, चिल. बट ही वाज लाइक वेरी प्रिंसिपल्ड. उसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप ये वाला गाना सुने और वापस आए. ऊंचा लंबा कद नहीं है जो इस बच्चे का,
2: ये यही करने वाली है. मुझे पता था, मुझे पता था यही करने वाली है ये. ओहो, अब वेट करना पड़ेगा.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
5: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सोलर पैनल्स।
1: इतना इंट्रो की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हाँ, फिर क्या हुआ?
2: मस्ती
0: इट इज लाइक जल्दी बताओ क्या हुआ। हाँ, तो फिर फाइनली उसके डैडी का, बच्चे के डैडी का मुझे आया फोन शाम को, क्या हम घर आ सकते हैं? और मैं उसी टाइम समझ गई कि बेटा अब ये घर आ सकते हैं का मतलब ये है कि तो वो छोटा सा
1: बच्चे ने मान लिया है।
0: हाँ, तो छोटा सा बच्चा साथ में आया, ठीक है, एवरीथिंग कूल। मैंने उसे देख के ही मुझे लगा यार प्लीज यार इसको क्या, आप एक दूसरे को मतलब मैं क्या गुस्सा तो नहीं कर सकती मैं इसको, ठीक है, इज वेरी क्यूट, इज लुकिंग एट मी, सॉरी। फिर उसको ज्ञान चेपा गया, बाप अपनी अपनी सारी की सारी जितनी प्रिंसिपल्स थे जिंदगी के उसको समझा रहा था। मैं भी धीरे धीरे, मैंने सिर्फ पूछा मैं तूने क्यों किया है, क्यों किया तूने, तो बस इसका जवाब दे दे। तो बच्चे ने मुझे बोला कि भैया मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि माय फ्रेंड्स वर नॉट प्लेइंग विद मी। तो फिर मुझे और दुख हुआ कि बेचारा अकेला था, लोनली था, गुस्से में तोड़ दिया। मैंने कहा बट मैंने तो कुछ नहीं तुझे कहा था ना, तूने मेरे घर पे क्यों नुकसान किया। एनीवे ऑल दैट हैपेंड एंड देन आफ्टर अबाउट 15-20 मिनट्स ऑफ भाषण व्हाट एवर टू गिव टू द किड एंड द किड सेइंग सॉरी, द फादर सेड व्हाई डोंट यू कम ओवर समडे, कम ओवर फॉर अ ड्रिंक, कम ओवर फॉर डिनर, ये वो, यू नो वी लव टू हैव यू ओवर, ठीक है, और प्लीज मुझे बताओ कितने पैसे देने करके। मैं बाहर छोड़ने जा रही थी, द लिटिल वन लुक्स एट मी एंड यू नो व्हाट ही सेज, Why don't you come over for a drink now? What? This 5-year-old tells me, Why don't you come over for a drink now? मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा and what drink will you serve me? है? मतलब मैं रात को दूध तो नहीं पीने आऊंगी। मतलब इट वॉज सच अ क्यूट थिंग टू से एंड ही लुक्स एट मी, नो एनीथिंग यू वांट टू ड्रिंक, माय आंटी कैन मेक वेरी नाइस डिनर ऑल्सो। मैं बेटा आज तो तू चला जा, तो तू डांट खा के जा रहा है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
1: हाउ क्यूट। अब मतलब रेनुका के चाहने वालों का रेंज, एज रेंज इतना ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती।
0: सो क्यूट, इमेजिन अ 5-year-old सेइंग कम ओवर फॉर अ ड्रिंक।

0: जब दिल लगा लिया तो अब क्या ही करेंगे, लग गया अब तो।
1: इसे ही तो प्यार कहते हैं, प्यार प्यार प्यार, 9 बजने के उस पार।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो।
0: दिस इज प्यार कम्स विद पैसा आल्सो, पैसा पैसा। सो वेल, मस्ती मैडनेस में मैं हूँ अद्रा, साथ में है रिन्यू का। एंड यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है कि एक बंदा जो है बड़ा ही, उसको नॉर्मल सा फीवर था, गया हॉस्पिटल अपना कि भाई इलाज कर दो। अब हुआ कुछ ऐसा कि एडमिट तो कर लिया कि ठीक है चलो आईवी ड्रिप वगैरह इसको चढ़ा देंगे, लेकिन हुआ कुछ और, किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिख गई एक खूबसूरत सी इसको नर्स। अब नर्स जब खूबसूरत सी दिखी तो फिर भाई का दिल आ गया। अब भाई ने सोचा कि अब कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो करते करते करते कि अब मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब इसके बाद ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा करते करते भाई ने 3-6 महीने हॉस्पिटल में गुजारे।
1: हाँ,
0: नर्स के चक्कर में। झटका भाई को तब लगा जब फाइनली उनको शायद थोड़ा सा होश आया होगा कि अब असल जिंदगी में भी देख लेते हैं कि क्या करना है। 12 लाख का इनका अस्पताल का बिल जो है इनको पकड़ाया गया।
1: हाँ
0: सर, मतलब ऐसा थोड़ी ना, मतलब सर।
1: हाँ एग्जैक्टली अब ले ले मजे। हाँ अब ले ले मजे। हाँ, नर्स के। हाँ
0: तो ले लो,
1: ठीक है। मतलब देखो, हर चीज दुनिया में, हर खुशी, हर एंटरटेनमेंट, उस पे टैक्स तो होता ही है, राइट? सो दिस इज जस्ट दैट, नथिंग एल्स।
0: बट नर्स तो मिली नहीं। यू नो हाउ द कमेंट सेक्शन इज सो एंटरटेनिंग एट टाइम्स। देयर वाज दिस वन कमेंट व्हिच आई रेड, कहता है भाई 12 लाख सीधा नर्स को ही दे देता, जिंदगी भर साथ रहती।
1: एक्चुअली दैट वाज अ बेटर वे, अनडाउटेडली। देखिए आज का जमाना है रील्स का जमाना, ठीक है, डायरेक्ट हिट, 30 सेकंड्स। ये इतना लंबा 6 महीने बेड पे रहने से और वो लड़कियां नहीं आने वाली है कि नहीं अंतरा? यस
0: अग्री अग्री।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Destination weddings and nay, unique tareeke, just to be different from the rest of the world, right? Radio Musty 24/7 par. Antra, you'd agree or you would agree?
3: Yeah, na, completely.
4: Crazy khabre aur hamara ye crazy show. This is Musty Madness.
3: You remember how we discussed about the crazy themes and all those things in weddings ke liye? Log pagla rahe hote hai ki aisa kar denge, tractor pe baith ke aa jayenge, aisa kar denge.
2: Haan, lekin this one, I tell you, takes the cake. हद ही हो गई. मैंने कभी नहीं सोची थी ये बात भी होगी. खैर, सिंगापुर में मैंने एक जगह ऐसी सिचुएशन थोड़ी बहुत सुनी थी, बट नॉट दिस बैड. सो वेल, गाजियाबाद की खबर बताने वाली हूँ. देयर इज अ गाजियाबाद कपल जिसने हाल ही में अपनी जो शादी है वो शमशान घाट पर रखी. इट वॉज अ डेस्टिनेशन वेडिंग एट द शमशान घाट, द क्रिमेशन ग्राउंड. जी हाँ. सो पता नहीं, इनको बहुत ही अनकन्वेंशनल डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी, ठीक है, और करी भी बिकॉज भाई ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में बैंक्स ऑफ द राम गंगा रिवर, वहां पर बहुत ही सुंदर सा क्रिमेशन ग्राउंड है. उन्होंने वहां पर अपनी शादी करी. सो देयर वर अबाउट 70 पीपल जो गाजियाबाद से आए थे टू होस्ट द वेडिंग. 50 लोगों ने इवेंट सारे के सारे ऑर्गेनाइज जो थे वो सब अटेंड करे. एंड जयमाला एंड बाकी के जो वेडिंग रिचुअल्स थे, दे वर डेलिबरेटली हेल्ड ऑन द क्रिमेशन साइट, जहां पर पूरी लाइट्स, म्यूजिक, वेडिंग डेकोरेशंस थे, ठीक है. अब मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया क्या बात है. It's so, मतलब some people said that it's disrespectful to religious sentiments and traditional जो हमारे customs हैं उसके बिल्कुल ही. और कुछ लोगों ने कहा कि भाई this is very symbolic कि जिंदगी हमारी आज से लेकर मौत तक साथ है और इसीलिए हम उसी जगह पे कर रहे हैं. मतलब really, what do you think? मजा आया कि नहीं आया?
3: I think the reason is something else.
2: Virals.
3: And that, no. The reason is महंगाई. I am so sure कि इन्होंने देखा होगा कि भाई और सारी चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी आ रही है, कहीं पर भी हमारे अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं आ रहा है. देखो, डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन यूनिक और बहुत सस्ते में, बहुत लाइक आधे से भी कम में इन्होंने सारा का सारा ये मामला सेट कर लिया होगा. I'm telling you.
2: सही बात है. तो इसी न्यूज को लेते हुए पुलिस की कंप्लेंट हुई, तो पुलिस अपनी इंटरोगेशन जो भी शुरू कर दी कि भाई ये क्या कर रहे हो. लेकिन ठीक है, इट वाज डन बेसिकली टू काम द पब्लिक. लेकिन बड़ी बात ये थी कि मैट्रिमोनियल जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी की सारी शादियां जो करते हैं वेडिंग प्लानर्स, उन्होंने इसी को अपनी न्यूज बनाया और कहा फॉर अनकन्वेंशनल आइडियाज एंड टू हैव वेरी स्पेशल मेमोरीज रीच आउट टू अस. हम आपको बताएंगे बेहतरीन जगहें. व्हाट
3: बताओ,
2: रियली?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग? या एस

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: एनिमल किंगडम इतना मतलब नायाब एंड यूनिक है ना कि मैं क्या ही बताऊं। आओ आज मैं तुम्हारा मस्ती ज्योग्राफिक खोलती हूँ यहाँ पे।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो
4: मस्ती मैडनेस नहीं मस्ती ज्योग्राफिक चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय कुछ जानवरों की बात करने वाली हैं हंसरा जी, बहुत ही खास जानवरों की खबर लेकर आई होंगी
2: जी। जी ऑक्टोपसेस की बात करूंगी मैं।
4: हाँ
2: मतलब आप जरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें और मैं सब चाहती हूँ सब विजुलाइज करने की कोशिश करें। सो बेसिकली मेल ऑक्टोपसेस एंड दिस इज अ स्पीशीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेल ऑक्टोपसेस जो है स्पीशीज में पर्टिकुलर वाले में दे आर सो अफ्रेड ऑफ द फीमेल कि जब ये लोग मेट करते हैं ठीक है, दिस मेल ऑक्टोपस लिटरली कट ऑफ अपना रिप्रोडक्टिव सेक्स आर्म यानी टेंटिकल इनके केस में, एंड वो फीमेल के पास छोड़ देते हैं वो कि तू अपना काम करता रहे,
4: छोड़ के भाग जाते हैं।
2: हाँ द आर्म एक्चुअली द टेंटिकल कीप्स मीटिंग विद द फीमेल व्हाइल दिस मेल रन्स फॉर इट्स लाइफ,
4: तो वो अपने आप चलता है।
2: एग्जैक्टली,
4: नॉट बैड, ओके,
2: एग्जैक्टली, या so and this male octopus is running for the life

0: क्योंकि टू लेट हो गया तो हमारी ये जो फीमेल ऑक्टोपस है उसका ये डिनर भी बन सकता है, बिकॉज अपेरेंटली द फीमेल ऑक्टोपस इन दिस पर्टिकुलर वन इज वेरी अग्रेसिव, दे एंड अप ईटिंग आफ्टर मेटिंग.
1: हाँ हाँ, तो हमने यही सुना था कि मेटिंग के बाद ये जो होते हैं ऑक्टोपस वो अपने मेटिंग जो भी आदमी होता है उसकी गर्दन को खा जाती हैं, राइट?
0: करेक्ट. हाँ, क्या था कि पहले ऑक्टोपस ने ऐसा कुछ, ये दिस इज इवॉल्वमेंट कि उसने स्ट्रेटजाइज किया कि अपनी जान कैसे बचाए,
1: तो अपना एक टेंटिकल वहीं पर काम करता हुआ छोड़ के चला जाता है कि उसको पता ही ना लगे कि आदमी तो भाग गया वहां से, पर सिर्फ सामान लगाया हुआ है. अच्छा, नॉट बैड. तो यहाँ पे मतलब बेसिकली इट इज द नेचुरल वाइब्रेटर ऑफ द एनिमल किंगडम. यह गाना है अंटा वाह वाह वाह. भाई एक बात है, ऑक्टोपस की दुनिया में इन्वेंशन इनोवेशन बहुत बढ़िया हो रही है. आई हैव टू
0: आई मीन सीरियसली, क्या सर्वाइवल स्किल निकाला है इसने.
1: नो कमेंट्स.

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.

0: ऑलराइट, वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. रेणुका अनंतरा जी हाँ विद यू. एंड यहाँ आप जानते हैं ना, हम टेढ़ी मेढ़ी सारी दुनिया की खबरें लेकर आते हैं. सिर्फ कोई कोई ग्लोबल न्यूज़ नहीं होती, कोई ऐसी खबरें नहीं होती, और ना ही बॉलीवुड होता है. यस
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है.
0: आई स्टिल हैवन गॉट ओवर द फैक्ट कि आदमी अपना सामान छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है, और औरत को पता ही नहीं लगता कि वहाँ आदमी के बिना बाकी सब सामान वही है. मतलब एंड शी इज एंजॉयिंग द मीटिंग विदाउट अ मेट. ओके, ऑलराइट. सो नाउ अगली खबर, मैं पोस्ट मीटिंग के बारे में कुछ करना चाहूंगी और मैं वापस इंसानों की दुनिया में लाना चाहूंगी. सो अंतरा, एज यू नो, इन अ लॉट ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, वो जब दुल्हा दुल्हन आते हैं घर पे शादी के बाद, तो दुल्हन के लैप पे उसकी गोद में एक लड़के को बिठाया जाता है, राइट? और इट इज ऑल विद द कॉन्सेप्ट कि आगे जाके उसका लड़का पैदा होगा, राइट? सो हाल ही में एक पूरी वायरल हो गई है एक क्लिप, जहां पर एक पति पत्नी अभी शादी करा के आए हैं, और जो लड़की है उसकी गोद पे एक छोटे से लड़के को बिठाया गया है, और फिर वो सारी औरतें, माइंड यू द वुमेन, आर आस्किंग किसके साथ खेल रही हो, एंड दे वॉन्ट हर टू से बेटा. Okay.
1: Okay.
0: Because obviously, whatever she says is what will happen. That is the what they believe in. So now this girl says, "Bachche ke saath." Right? The moment she says, "Bachche ke saath," they all get a little bit. Nahi nahi, bolo, beta, bete ke saath, beta ke saath. And then the nice thing is that both this girl as well as the husband, dono bolte hain, "Nahi, bachche ke saath." They actually, even in that moment when they could have easily been, you know, ki haan, theek hai, jo bade bude keh rahe hain, bol do, kya farak padta hai, which everybody does mostly, right?
1: How nice.
0: Yeah, they actually said, nahin, bachche ke saath, and that is so amazing. I loved what happened, and maine kaha, thank God, the woman did not just blindly say, haan, haan, bete ke saath. Kyun bhai?
1: I always say that, you know, in every generation there is that one woman who changes the game altogether.
0: True.
1: That does something, or baki ki agli kai sari pushte wo enjoy karti hai because this girl did something like this. That thought process and the dharae, because the rest of the women were saying, right, ki bhai beta bolo, beta bolo.
0: Haan, exactly. And by the way, if only this worked. ऐसे तो फिर सारी दुनिया में सच में ही बेटे ही होते जिनके तुम गोद में बिठा दोगे किसी लड़के को, तो लड़का तो हो नहीं जाएगा. मतलब इज रियली रियली व्हाटएवर हैपेंड टू साइंस.

0: अच्छा तो हम भी चलते हैं आज के दिन में.
1: यस एंड यस एंड ओहो यस.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
3: इन्होंने ऐसा ऐसी जादू की छड़ी घुमाई ना. शी यूज्ड हर बॉस वीटो पावर. शी इज लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अब मेरा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब हर फ्राइडे शाम को मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाती थी ये दुनिया, और मैं सोचती रह जाती थी कि मैं ही क्यों. मेरी फ्राइडे की शाम सारी मिस हो रही है, मेरी पार्टीज मिस हो रही है, मेरे इवेंट्स मिस हो रहे हैं. लोग मुझे कह रहे हैं क्या कर रही है, अरे यार सुन लो ना शो चल रहा है, यू नो. एंड नाउ देन आई सेड तोड़ निकालो. बड़े सारे लोगों ने बोला यार हम मिस कर देते तुम्हारा शो, तुम फ्राइडे शाम करती हो. मैंने कहा हाँ, लोगों की डिमांड है. अब लोगों की डिमांड है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ. बहुत मेरा दिल पसीज गया कि मैंने कहा थर्सडे कर लेती हूँ यार. हाँ,
3: सो बॉस ने अपनी वीटो पावर यूज की एंड नाउ आपने कल सुन लिया होगा. अभी तो ये खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आज शाम को एक और करना है.
0: ऐसे ने तो बोला मैं भी चली. तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मली आपको मैं अपने मुंह से बता रही हूँ अब कि हमारा मस्ती टॉप चार्ट्स थर्सडेज को शिफ्ट हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी तो थर्सडे शाम से शुरू हो जाती है, तो हम आपकी पार्टी को फ्राइडे शाम तक रोक के रखें. राइट अंतरा, व्हाट डू यू थिंक?
3: माय गॉड, इतना बड़ा सैक्रिफाइस.
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरा दिल इतना ही बड़ा है. चलो एंजॉय द डे. एंड हाँ, मुग्धा से बात करते रहना शाम को, बिकॉज फिलहाल के लिए उसकी ड्यूटी रही है फ्राइडे शाम का शो करना, एंड शी इज नॉट वेरी अम्यूज्ड अबाउट इट. हाँ, तो जरा संभल के बात करना आप उससे, बट हाँ, डू कीप हर कंपनी. ऑल राइट, हम भी यहाँ से निकलते हैं हम माँ गाने के साथ. क्यों अंतरा, हम दोनों?
3: हाँ जी हाँ जी, वो पहले उसने सोचा होगा कि मुझे क्यों, फिर उसको एक नजर आई बॉस, दूसरी नजर आई प्रोग्रामिंग मैनेजर, उसने कहा कि चॉइस ही क्या है मेरे पास.
0: होता है होता है, जो सबसे लेट ज्वाइनर होता है ना टीम में, बेचारा वही भुगतता है ऐसी चीजें. बट वेल, आई एम ग्लैड शी इज नॉट लिसनिंग राइट नाउ. ऑलराइट, रेडियो मस्ती 24/7, गाइस हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, और हम मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द. स्टे ट्यून्ड, बाकी के लोग यही हैं. बाय.
3: हाँ जी हाँ जी, सब यही पर.
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया'स फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: love songs.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
3: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: Yeah.
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
0: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
1: चेक इट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा।
1: हाँ जी जी।
0: आधा केजी मसूर दाल।
1: जी जी।
0: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेजेंड्स की इस खास सीरीज में लेजेंड्स द अचीवर्स। और इन दिनों हम लेजेंड्स में उन शख्सियतों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने जीने के सलीके सिखाए हमें, जिनकी ऊर्जा से आज तक हम ऊर्जा ले रहे हैं, जिनका नाम आज एक पहचान है और जिनका काम आज हमारे लिए किसी विरासत से कम नहीं है, जिसे सहेजना है तो आगे भी बढ़ाना है। वेल, मेरा नाम है समर, यही मिलता हूँ आपसे यह रेडियो 24/7 लाइव। और मैं घर पर जब भी रईसगिरी दिखाता हूँ ना, तो मेरी माँ बोलती है, ज्यादा टाटा बिरला हो गया है क्या, गोया ये नाम ना हो बल्कि रईसियत के सिंबल हो। और ये पहचान उन्होंने खुद ही अचीव भी की है, तभी तो आज लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इन दोनों में से एक को। किससे मिलवाऊं? ऐसा करते हैं, वैसे टाटा से तो मैं आपको मिलवा चुका हूं, इंडिया के राजस्थान आपको लिए चलता हूं। आप सोचेंगे राजस्थान क्यों भाई, दरअसल मैं भी राजस्थान से ही हूं और राजस्थान तो है ही कमाल, क्योंकि यहां पर माटी बांधे पैंजनी, पगड़ी पहने बादली, डेढ़ो डेढ़ो बावड़ो, घोड़ मतोड़ बावड़ी। और उस धरती से अगर ऐसी कोई शख्सियत निकली हो तो उससे मिलवाना तो जरूरी हो जाता है। सो आज मैं आपको टाटा बिरला में से बिरला से मिलवाऊंगा। शुरू करते हैं शो, खमागनी राम राम सा, भली पधारो सा, राजस्थान में आप थोड़ा सा राजस्थानी ठाट बाट का मत।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया's first female-led action.

0: Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: हाँ जी, वेलकम बैक, आप सभी का लेजेंड्स में स्वागत। मूड गाड़ी पर सवार होकर हम पहुंच गए राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी में, जहां एक मारवाड़ी परिवार में हमारे आज के लेजेंड का जन्म हुआ। तारीख थी 10 अप्रैल 1894। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बिड़ला परिवार की, जहां हमारे आज के लेजेंड ने जन्म लिया। वो हैं घनश्याम दास बिड़ला, जिन्हें लोग जीडी बाबू कहकर बुलाया करते थे। हम भी उन्हें वही बुलाएंगे। वेल, मारवाड़ी लोगों के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि मारवाड़ शब्द मारू और वाड़ा के मिलन से बना है। हालांकि मारवाड़ का मतलब है मौत की जमीन, लेकिन बिजनेस की जमीन कह सकते हैं आप, यहाँ जहाँ से व्यापारी पैदा होते हैं। हालांकि ये इलाका जहां जीडी बाबू पैदा हुए वो शेखावाटी इलाका कहलाता है, लेकिन इसे भी मारवाड़ में शामिल किया जाता है। वेल, एक बात कही जाती है कि मारवाड़ी सफल व्यापारी होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इस पर कई रिसर्च भी की गई है। थॉमस टिम्बर्ग नाम के आदमी ने तो मारवाड़ियों पर डॉक्टरी की है, पीएचडी की है। उनकी सफलता के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे मजबूत पारिवारिक संगठन, जोखिम लेने की हिम्मत, पैसे की समझ। दरअसल राजस्थान के लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है, तो उनके भीतर एक बड़ी नेचुरल सी आदत होती है सहेजने की। अब पानी को ले लीजिए, राजस्थान में बारिश कम होने की वजह से यहाँ के लोग पानी को इकट्ठा करने के तरीके ढूंढते हैं। बस ऐसे ही पैसा भी उन्होंने इकट्ठा करना और सहेजना सीख लिया, और उसका सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करना भी सीख लिया, जिसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम और आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर अपनी कहानी पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी किसी भी कहानी का सिरा ढूंढने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो हमें भी जाना होगा इसके लिए एक ब्रेक।

0: बस बस बस बस सांप रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो माँ, चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं आपको कहानी में बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं 18th सेंचुरी में, जब से मुगल साम्राज्य का पतन होना देश में शुरू हुआ। तभी से मारवाड़ियों ने अपने जमा किए गए पैसों को लोगों को ब्याज पर देना शुरू कर दिया था। यानी एक तरह का बैंक हुआ करते थे वो लोग, मारवाड़ी लोग, लोकल बैंक, जो गांव के लोगों को जरूरत के समय इंटरेस्ट पर पैसे दिया करते थे। जीडी बाबू का जन्म ऐसे ही मारवाड़ी परिवार में हुआ, जहां पर इन लोगों का यही पेशा था। लेकिन इनके दादाजी शिव नारायण बिड़ला ने इस पेशे से हटकर अलग क्षेत्रों में व्यापार का विकास किया था। दरअसल ब्रिटिश रूल के टाइम पर 19th सेंचुरी में मारवाड़ियों का आउट माइग्रेशन शुरू हुआ। दिल्ली होते होते गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में ये जाने लगे। रेलवे के आने के बाद कोलकाता और फिर बांग्लादेश जाकर शुरू किया, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे या आसाम पहुंच गए और फिर वहां से बर्मा, बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट से नीचे आए और फिर सेंट्रल और उसके बाद विदर्भ और मराठा में, यानी महाराष्ट्र, यानी बॉम्बे, यानी पैन इंडिया मारवाड़ी। इन लोगों के बीच पैसे का लेन देन हुंडी सिस्टम से होता था। बिजनेस करने दूर दूर जाना होता था तो कैश नहीं ले जाना पड़ता था। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि इस हुंडी सिस्टम से शुरू हुआ मल्टी ब्रांच मारवाड़ी ट्रेडिंग फर्म्स का। इनमें से एक थी ताराचंद घनश्याम दास, जिसके 1870 में कलकत्ता, बॉम्बे, अमृतसर, पंजाब आदि जगहों पर ब्रांचेस थी। इस फर्म ने लुभाया और मारवाड़ी व्यवसायियों को, और जीडी बाबू के दादाजी शिवनारायण जी इस फर्म के साथ काम करने लग गए और लोगों को सूद पर पैसा देने लगे, बड़े लेवल पर, बॉम्बे जाकर। जब जीडी बाबू के फादर बड़े हुए तो वो भी अपने पिता को असिस्ट करने लगे। उनका नाम था बलदेव दास। उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ मिलकर अफीम का व्यवसाय शुरू किया और इसमें उनको काफी फायदा हुआ। इसके बाद वो कलकत्ता चले गए और इन्हीं के यहाँ जन्मे जीडी बाबू। आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद। आई होप आप अब तक किस्सा तमाम जान चुके हैं, मतलब

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक लेजेंड्स में, आज आप सुन रहे हैं घनश्याम दास बिड़ला की कहानी समर की जुबानी। जीडी बाबू बचपन से ही बड़े खेलकूद के शौकीन रहे और उनको एक बहुत बड़ा और गहरा शौक था पहलवानी का, और इसकी भी उन्होंने शिक्षा ली, एक गुरु बनाया जिनसे उन्होंने पहलवानी के गुर सीखे। इसके अलावा उनको शौक था किताबें पढ़ने का, उन्होंने बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, उनमें पढ़ने को लेकर बहुत ललक थी। मगर व्यवसायियों की फैमिली में लड़के को बिजनेस में लगा दिया जाता था। उनके दादाजी को भी डर लगा कि अगर ये कहीं पढ़ाई लिखाई में लग गया तो बिजनेस कौन संभालेगा। उधर 10 साल की उम्र में वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग गए थे। बड़े हुए तो लिटरेचर पढ़ने लगे, बांग्ला साहित्य पढ़ा, गुजराती भी बढ़िया से बोलने लगे। वेल, दादाजी को उनकी अंग्रेजी देखकर डर लगा। उनको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन उन्होंने कराया ही नहीं, ये सोचकर कि कहीं ये अंग्रेज न बन जाए। कोई बदलाव मंजूर नहीं था उन्हें। ऐसा ही कुछ जीडी बाबू ने भी आगे चलकर कहा। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत बदलेगा कभी, उन्होंने कहा, हमारे कपड़े बदल सकते हैं, हमारे घर बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं, मगर हम वही रहेंगे, हमेशा भारतीय। मुझे लगता है हम पहली सदी और 20वीं सदी का मिक्सचर है। इसलिए फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि जीडी बाबू आगे पढ़ना चाहते थे मगर उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया।

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste bahan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं आपका स्वागत दोनों बाहें फैलाकर। लेजेंड्स द अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जीडी बाबू की, यानी घनश्याम दास बिड़ला जी की। हम उनकी कहानी में थे जहाँ जीडी बाबू पढ़ना चाहते थे मगर घर वाले समझे नहीं, छोटे से किसी स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। लिहाजा जीडी बाबू कोलकाता आने जाने लगे स्कूल के लिए। वहाँ जाते तो बांग्ला लिटरेचर पढ़ने लगे वो। दादाजी को फिर टेंशन हुई तो उन्होंने खानदानी अकाउंटेंसी सीखने को कहा। ये एक अलग ही टाइप की अकाउंटेंसी होती है, इसे पाथा सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये एक बड़ा ही अनूठा सिस्टम है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ज्यादा इकोनॉमिक्स तो मुझे नहीं आती है, पर मारवाड़ी लोग हर दिन का अपना हिसाब तय करके रखते थे और आज भी रखते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन रखते हैं, कितना माल लगेगा, कितने में बिकेगा और कितना प्रॉफिट होगा। और अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो ट्रबल शूटर भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है आखिर, और वो रिपोर्ट करता है, फीडबैक देता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यानी बात पर नहीं छोड़ते, हर दिन का एवेल्युएशन हर दिन होता है। तो वेल इसी प्रोसेस को स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने भी अपनाया है, ये फुल प्रूफ प्लान है। अच्छा, इस बीच दादाजी ने सोचा एक और प्लान, क्यों ना जीडी बाबू को व्यस्त कर दिया जाए। उन्होंने एक अल्टीमेट प्लान बनाया और वो था उनकी शादी कराने का। और उनकी शादी करा दी गई। उनके पिलानी कस्बे के पास ही के गांव चिड़ावा की रहने वाली थी उनकी पत्नी और नाम था उनका दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई और बहुत जल्द यानी शादी के 4 या 5 साल के भीतर ही वो गुजर गई। एक बेटे की माँ थी वो, जिनका नाम लक्ष्मी निवास मित्तल था। आगे क्या हुआ इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, मगर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: मन्नू लेट्स गो।
1: चलो सब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
2: सॉरी
0: टोकरी संभालो। जगह कैसी है?
2: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे?
0: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
2: सोच लिया।
0: और अगर न कर सके तो?
2: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
2: क्या?
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
2: टोकरी?
0: मंजूर।
2: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लू। वो देखते हो वो?
2: हाँ।
0: क्या?
2: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ
2: मुर्गी।
0: हाँ
2: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हाँ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स द अचीवर सीरीज, और मैं आज आपको सुना रहा हूँ हमारे आज के अचीवर घनश्याम दास बिड़ला की कहानी। जी हाँ, जीडी बिड़ला की कहानी। कहानी के उस मोड़ पर थे हम जहाँ दादाजी सोचते थे कि जीडी बिड़ला की शादी कर देने से वो ठीक हो जाएंगे, किताबों के बजाय अकाउंटेंसी में दिमाग खपाएंगे। मगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बड़े शहर जाकर व्यापार सीखने की मारवाड़ियों की रवायत को घनश्याम दास भी निभाते हुए पिलानी से लखनऊ चले आए और यहाँ वो एक हॉस्टल में रहने लगे। उस हॉस्टल में ऑलरेडी कई मारवाड़ी बच्चे रहते थे। सब एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे और सीखते थे, और आखिरकार बिजनेसमैन के बेटे और पोते थे तो जींस में मौजूद बिजनेस बाहर आ ही गया। और सिर्फ 16 साल उनकी उम्र थी, वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फर्म खोल ली और पटसन यानी जूट की दलाली में लग गए। इसमें उनका साथ उनके फादर इन लॉ ने दिया। ये उन दिनों की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कॉटन और जूट की बहुत डिमांड थी और इसका फायदा उनके नए नए बिजनेस को मिला और खूब मुनाफा कमाया उन्होंने। इधर अंग्रेज व्यापारी बिड़ला से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने जूट के बिजनेस पर एक तरफा कब्जा कर लिया था और वो यूरोप के कारखानों को ऊंचे दामों पर पटसन बेचते थे। इधर अंग्रेजों ने इससे बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए, मनी रेगुलेशन को पूरा अपने बस में कर लिया, यानी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तब जीडी बाबू ने अपना स्वर बुलंद किया और उन्होंने हिंदुस्तान के सोने और स्टर्लिंग की लूट का नारा दिया। पूरे देश में विद्रोह कर दिया उन्होंने। कई बार अंग्रेजों ने सोचा कि इनके बिजनेस को बंद कर दें, मगर वो नाकाम रहे क्योंकि वो कहते ना, हौसले फतह बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार उठाया नहीं करते। और कुछ ऐसा ही किया जीडी बाबू ने भी। उनके हौसले वाकई में बहुत बुलंद थे, वो डरे नहीं और काम जारी रखा। मैं भी दास्तान जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो कहानी के अगले मोड़ पर हम मिलेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
3: क्या जी?
4: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और आज मैं आपको सुना रहा हूं इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यवसायी घनश्याम दास बिड़ला की जिंदगी के सफर की कहानी। जूट के बिजनेस में पूरी तरह से जुटे जीडी बाबू ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका हथियार उनका साहस था। हौसले से लबरेज जीडी बाबू ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने की ठानी और 1919 में कोलकाता में बिड़ला ब्रदर्स के नाम से पहली जूट मिल स्टैब्लिश कर दी। और इस बीच जब वो अंग्रेजों से एक तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, एक और शख्स था देश में जो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे बापू। 1916 में दोनों मिले। बापू की आइडियोलॉजी से जीडी बाबू बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी से ये मेरी मुलाकात प्लान नहीं थी, मैं बारी बारी से उन सब लोगों से मिलना चाहता था जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इसीलिए जीडी बाबू खुद गांधी जी से मिलने चले गए। गांधी जी तब हिंदुस्तान लौटे ही थे साउथ अफ्रीका से, और इसके बाद वो देश भर का दौरा कर अपनी यात्रा से लौटे थे। पूरे देश में उनको लेकर उत्साह था, खासकर नौजवानों में। जीडी बाबू भी बहुत छोटे थे। स्वागत करने के लिए गांधी जी का, स्वागत करने की तैयारी जैसे जिम्मेदार युवाओं को सौंप दी जाती है ना, बस वैसे ही उन्हें भी सौंप दी गई। तो स्वागत की तैयारी में लग गए जीडी बाबू। इसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर आपको एक ब्रेक पर ले चलूंगा और ब्रेक के बाद बताऊंगा कि इसके बाद हुआ क्या। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और कहानी सुनाने वाला भी इंटरेस्टिंग है। कभी आकर मिले तो सही, नहीं कभी आकर फेसबुक पर ही मिल लीजिए।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज मैं घनश्याम दास बिड़ला जी की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। बिड़ला जी को भी इसी काम में लगाया गया। जब बापू कलकत्ते से आए तो सब में उछा था, सब में बड़ा उत्साह था कि हम बापू की आव भगत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे वो भी याद रखेंगे। बकौल जीडी बाबू, भीड़ बापू को सुनने को आतुर थी। लेकिन बापू ने जब बोलना शुरू किया बड़ी नीरस आवाज में, कोई उतार चढ़ाव नहीं आवाज में, कोई प्रभाव नहीं, ऊर्जा भी नहीं, मगर एक तार था जो उनको सबसे जोड़ता था। कुछ बात नहीं थी तब भी, और ऐसा जादू डाला कि दोनों जिंदगी भर फिर जुड़े रहे। बापू को जीडी बाबू ने खत लिखा, बहुत कुछ लिखा उसमें, और एक सवाल पूछा कि क्या आपसे किसी सार्वजनिक मसले पर भी बात हो सकती है। उन्होंने जवाब में लिखा, हाँ बस इतना ही, पर पत्र का जवाब जरूर आया। इस बात से ही जीडी बाबू बहुत खुश हो गए। खैर, इसके बाद तो ये याराना इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक खतों किताबत करते रहे, एक दूसरे को खत लिखते और अपनी अपनी बात कहते, इवन मौसम, बिजनेस की सब चीजें शेयर करते। इनफैक्ट आखिरी वक्त में जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब भी वो बिड़ला भवन से ही बाहर निकले थे और वो वहीं रहा करते थे उन दिनों। वेल, इधर जीडी बाबू का किताबें पढ़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने अपनी खुद की लाइब्रेरी बना ली, बाहर जाते विदेश तो किताब ले जाते। एक किताब जो वो हर रोज पढ़ा करते थे वो थी श्रीमद् भागवत गीता। ये काफी कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के हिंदी एडिशन में भी बतौर एडिटर काम किया। और हाँ, बापू से इंस्पायर होकर उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज पेपर शुरू किया। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही वो बापू के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल हेल्प बनकर सामने आए। बापू को जब भी जिस भी चीज की जरूरत हुई जीडी बाबू ने उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई। हर महीने कुछ अमाउंट तो वो उन्हें देते ही थे। इधर बिजनेस के साथ साथ उनकी लाइफ में एक और तब्दीली आई और वो ये थी के क्या आप सुन रहे हैं क्या रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और जब जब तब्दीली आती है तो मैं भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता हूँ, है ना, आपको थोड़ा सा टीज कर जाता हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कहानी को मैं जारी रखूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर एक कहानी पहुंच चुकी है, आप बस सुनते रहेगा लेजेंड्स मेरे यानी समर के साथ।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
6: आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज जीडी बाबू की कहानी मेरी जुबानी। साल 1912 में ही जीडी बाबू की दूसरी शादी हो गई और उनकी वाइफ का नाम था महेश्वरी जी। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, 2 बेटे कृष्ण कुमार, बसंत कुमार और 3 बेटियां चंद्रकला, अनुसुईया और शांति। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले ही हैं, महेश्वरी जी भी चल बसी। ये लोग कुल 10-12 साल ही साथ रह पाए। अब पूरी तरह से जीडी बाबू ने अपने आप को देश की सेवा में लगा दिया और बिजनेस में, और अपने बच्चों की परवरिश अपने भाइयों को सौंप दी। 1939 के आते आते उनकी जूट फैक्ट्री देश की 13वीं सबसे बड़ी प्राइवेट फैक्ट्री बन चुकी थी। ठीक इसी तरह जीआरडी टाटा भी हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर रहे थे और एक अनुमान के हिसाब से 1939 से 1969 तक टाटा की संपत्ति 62.42 करोड़ से बढ़कर 505.56 करोड़, करीब 8 गुना ज्यादा हो गई थी। और उधर घनश्याम दास बिड़ला की संपत्ति 4.85 करोड़ से बढ़कर 456.40 करोड़, यानी करीब 94 गुना हो गई थी। दोनों ही संपत्ति बना रहे थे, पर बिड़ला का मामला दीगर था, अलग था। उनके साथ न तो कोई पुराना इतिहास था और न ही कोई विरासत। संघर्ष और लड़ाई ज्यादा थी। जिस तरह जूट की दलाली में उन्हें अंग्रेजों से जूझना पड़ा, ठीक उसी तरह जब उन्होंने 1958 में हिंडाल्को की स्थापना की, तब भी उन्हें अफसरशाही से लड़ना पड़ा। आजादी के आंदोलन में जीडी की 3 तरफा भूमिका थी। पहला, उन्होंने पुरुषोत्तम दास ठाकुर के साथ मिलकर फिक्की की स्थापना की। दूसरा, आजादी की जंग में उनसे ज्यादा धन किसी ने नहीं लगाया। और तीसरा, 1926 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की पार्टी की तरफ से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोरखपुर की

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। और आज हम बात कर रहे हैं जीडी बाबू उर्फ घनश्याम दास बिरला जी की। उनकी कहानी में अब तक आपको क्या मिला मैं बताता हूँ। 1919 में पहली जूट मिल बनी, 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स, 1928 में शिपिंग में आ गए और 1932 में अवध में शुगर मिल्स लगाई उन्होंने और 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स, 1943 में टेक्सटाइल मशीनरी और स्टील सेक्टर में आ गए, सिमको बिरला सेटअप की, 1947 में ग्रासिम की स्थापना की आजादी के 10 दिन बाद ही और 1950 में रेलवे वैगन्स बनाना शुरू कर दिया। हिंडाल्को एंड मैसूर सीमेंट ये भी तो उन्होंने बनाया और इसके बाद डिफेंस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट भी गवर्नमेंट को सप्लाई करने शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहा, हालांकि अभी मैं सब कुछ शामिल नहीं कर पाया हूं क्योंकि ये उनका साम्राज्य है और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो साल 1983 में जीडी बिरला साहब हम लोगों को छोड़कर चले गए, गुजर गए। उन्होंने अपनी उम्र पूरी उम्र जी और बहुत अच्छे से जी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद 1986 में 6 ग्रुप्स में ये बिरला ग्रुप टूट गया। एमपी बिरला, एस के बिरला, के बिरला, बी के बिरला, एवी बिरला, जीपी, सी के बिरला एंड अशोक बिरला ग्रुप। हालांकि गुजरने से पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सभी लोग मनु की संतान हैं, हमारी एक बड़ी फैमिली है, सबके एम्बिशन और आइडियाज अलग हैं, एजुकेशन अलग है और सब कुछ अलग है और बाद में क्या होगा पता नहीं। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, दैट्स ऑल। सम्मान तो हम भी उनका करते हैं। चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है, कुछ लोग जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं। जीडी बाबू दूसरे वाले लोगों में से थे जो कुछ बनना चाहते थे। जीडी बाबू को हमारा सलाम। फिलहाल चलता हूं, फिर किसी एक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मस्कान।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
6: They were not chosen. They were created.
7: उसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
8: Alpha.
9: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
10: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
9: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
11: Alpha program उसका जुनून है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
9: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh mein
4: raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musty Music Cafe.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: अकड़ी बकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो
2: दिक्कीरो
3: दिक्कीरो
4: दिक्कीरो
5: दिक्कीरो

0: डांसिंग फार एंड स्टाइल।
1: स्लो डाउन बॉयज़।

0: पार्टी ओवर गो।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।
2: तुम तकिन दिखे तकिन।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: 3, 2, 1
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
5: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
6: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
7: Check it out.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: All music is loud. Some songs just sneak in.
1: What?
0: Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल।

0: किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
0: क्या जी?
1: जी GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो और grocery at your doorstep.
0: वाह जी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: चश्म बद्दूर।
1: दिस इज रेडियो मास्टी 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।

0: इनकी शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो हेलो हेलो और वेलकम है आपका मस्ती हैंगआउट में। वेल इट्स अ न्यू डे राइट, जहाँ पे वीक का स्ट्रेस गेट पे रुक जाता है, अंदर आती है सिर्फ गुड वाइब्स, बस इन्हीं की एंट्री अलाउड है। अब ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स सबको थोड़ा साइड में रखो, बिकॉज अब सीन स्विच होने वाला है। मस्ती हैंगआउट आज सेम ओल्ड फ्लो में नहीं आएगा। यो यो, सेम नेम सेम वॉइस बट फील एब्सोल्युटली न्यू है आज के शो का। थोड़ा ब्राइटर है, थोड़ा फास्टर है, थोड़ा मोर अलाइव है, यानी मोर लाइवली। आज कोई हैवी बातें नहीं होने वाली है, कोई स्ट्रेस वाला टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें दिमाग को एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी पड़े, बिकॉज इट्स फ्राइडे वेव। आज का सीन इट्स गोना बी सिंपल, यू रिलैक्स, आई रिलैक्स एंड म्यूजिक हैंडल्स द रेस्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज म्यूजिक इज द बेस्ट। एंड व्हाट आई फील, शुरुआत के लिए एक ऐसा साउंड चाहिए जो आते ही रूम की लाइटिंग को चेंज कर दे, एब्सोल्युटली फ्रेश, शाइनी, बीट में बाउंस और फील में वो ग्लोबल मीट्स वो जो देसी वाला स्पार्कल होता है ना, दैट वन। यू नो दो सॉन्ग्स जो मूड को धीरे धीरे नहीं इंस्टेंटली लिफ्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद

फ्राइडे को और ज्यादा वाइबिन बनाएंगे। मुग्धा आपके साथ है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। दिस इज द न्यू मी। क्या कहेंगे आप इसे, मस्ती हैंगआउट 2.0? नॉट बैड।

0: उसकी माँ का नाम जान की था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाह जी, क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक टू मस्ती हैंगआउट। और अगर आपको लग रहा है कि आज का शो का फील इट्स क्वाइट डिफरेंट, तो सही पकड़े हैं। सेम वॉइस है, सेम मस्ती हैंगआउट है, बस आज का वाइब इज लाइक फ्रेश, थोड़ा लिफ्टेड है, थोड़ी सी शाइनी एनर्जी है, बिकॉज यही तो है हमारा सफायर इफेक्ट, राइट? कभी कभी ना कोई गाना बस मूड को हल्का सा पॉलिश करता है, बिना किसी ज्यादा नॉइज के, बिना किसी ज्यादा शोर के, बिना किसी ज्यादा ड्रामा के, बस एक फ्रेश एनर्जी देता है पूरे शो को। एंड पता आपको, बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे सितारे हैं, ऐसे स्टार्स, ऐसे सफायर्स हैं जिनकी शाइन ऐसी होती है, दे आर काम, दे आर क्लासी एंड अननेसेसरी ड्रामा के बिना वो अपना काम करते रहते हैं। रिसेंटली राजकुमार हिरानी ने रणबीर को लेकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उन्होंने बताया कि संजू के वक्त पे उन्हें रणबीर के साथ कोई एंटूराज इश्यूज फेस नहीं करने पड़े, और हिरानी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरी फिल्म मैनेज करते हुए उन्हें पता ही नहीं था कि रणबीर का मैनेजर कौन है। वाओ, क्योंकि रणबीर खुद डायरेक्टली सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एंड एक और बहुत इम्प्रेसिव डिटेल है, द सफायर वन, द ब्राइटेस्ट वन। संजू में रणबीर का लुक काफी डिटेल्ड था, यू नो, द बियर्ड, द प्रोस्थेटिक्स, द मेकअप। कई बार ना 4 से 5 घंटे लग जाते थे। अगर शूट सुबह 7 बजे का होता तो रणबीर 3 बजे फिल्म सिटी पहुंच जाते और हिरानी 6 बजे आते थे। एंड रणबीर की वैन में उनका मेकअप चल रहा था। सो बेसिकली वॉज अ डेडिकेटेड लैड, राइट, जो बहुत ध्यान रखते थे अपने काम का। उसके बाद 12 घंटे का शूट एंड कंप्लेन्स वर लाइक जीरो। दैट इज ऑल्सो माई डियर सफायर एनर्जी। शाइन है, कमिटमेंट है, प्रेजेंस है, बट बिना किसी एक्स्ट्रा शोर के। कभी कभी ना रियल स्टार पावर यही होता है, लाउड नहीं होती है, काम में दिखाई देती है। सो वेदर इट्स अ सॉन्ग स्टार या फिर आज आपका मूड, चमक वही अच्छी है जिसमें कोई क्लास हो पर कियोस नहीं हो, राइट?
2: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा, हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा।
1: I'll be back with some more interesting baatein. आप सुन रहे मुग्धा को, stay tuned.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info

0: info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ.
2: 3, 2, 1.
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
4: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो एवरीवन, यू आर विद मी ऑन मस्ती हैंगआउट। आप मुझे सुन रहे हैं, द शो इज लाइक फ्रेश, एकदम शाइनी, थोड़ा अपग्रेडेड फील के साथ आगे बढ़ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस वन। सफायर का मूड एग्जैक्टली यही होता है, इट्स पॉलिश्ड, चमकदार होता है। अब चमक की बात चली है तो मैं इस चमक को कैसे इग्नोर करूं? ये इतनी चमकीली चमक है कि दूर से चेहरे पर चमक रही है। आफ्टर इस 3-2, श्रद्धा का बज वाज क्लियरली नेक्स्ट लेवल पर, है ना? सो नाउ शी इज कमिंग अप विद 8 15 crore तक उनकी फीस पहुंच गई है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस 3-2 के लिए उनकी जो उस वक्त की रिपोर्टेड फीस थी, दैट वाज लाइक 5, मतलब बॉस 3 गुना का जंप, इतना महंगा सफायर। दैट्स नॉट जस्ट अ ग्लो अप एक्चुअली, दैट्स अ फुल सफायर अपग्रेड। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग जोन में है। दरअसल देखा जाए तो एठा जो है वो एक बहुत ही लेजेंडरी तमाशा आर्टिस्ट पर बेस्ड है, जिनका नाम है विठाबाई। उनकी बायोपिक है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने छावा डायरेक्ट करी थी। साथ में रणदीप हुड्डा है, मोहम्मद जिशान अयूब है, उनके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, की रोल्स में है। और फिल्म रिलीज हो रही है August 28 को। हाँ, टाइटल को लेकर थोड़ा इठा उठा चल रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस जिनकी हो रही है, जिनकी बात हो रही है, कैरेक्टर है, तो नाम थोड़ा ऐसा दमदार होना चाहिए, शाइन के साथ पावर, हमारे अगले आर वाले सेगमेंट की तरह, वो बताऊंगी क्या है। लेकिन डिस्कशंस इसको लेके भी काफी चल रही है। बट द ओवरऑल सीन ये है कि श्रद्धा कपूर का सफायर मोमेंट चल रहा है, शाइन है, बज है, बिग प्रोजेक्ट्स हैं और इंडस्ट्री वैल्यू भी है। यही होता है जब सही प्रोजेक्ट हाथ लगता है, टाइमिंग सही होती है, ऑडियंस का प्यार भी मिल जाए, सब मिला करके आपकी लाइफ में सफायर इफेक्ट क्रिएट करता है, शावा, है ना? आइए इसी बात पे अगला गाना हो जाए। स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, welcome back. मस्ती हैंगआउट करने आप फ्राइडे एडिशन चल रहा है जहाँ पे हम स्ट्रेस को बाहर रखते हैं और वाइब को अंदर। और पहले आर का जो टोन से फायर था ना, उसने एनर्जी को प्रिटी सेट क्लियरली एक्चुअली सेट कर दिया है। फ्रेशनेस, बाउंस, शाइन, ऐसी एनर्जी जो कि फोर्स नहीं करती है, बस नेचुरली आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। ये जो गाना है फुल पार्टी मोड एब्सोल्युटली नहीं है, पर डेफिनेटली टेल्स यू डोंट स्टे डल। एंड यही बात आज के मस्ती हैंगआउट का फील है। थोड़ा कलर है, थोड़ा मूवमेंट है, थोड़ा फिल्मी एस्केप है और जीरो अननेसेसरी हेवीनेस। सो फायर वाली वाइब एक चीज साफ करती है, कभी कभी ना मूड चेंज करने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, बस एक राइट साउंड, एक राइट बीट और थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़ना इज ऑल वी नीड। हाय, मैं तो पूरी फ्राइडे मोड में आ गई। सीरियसली मेरा तो मन कर रहा है रैप अप करूं और घर चली जाऊं, हाय और गाना सुनूं। और घर जाने और इन सारी चीजों से मुझे एक याद आया, फ्रेश शाइन की बात से मुझे याद आया, बिकॉज बॉलीवुड में सिर्फ गाने ही मूड सेट नहीं करते, कभी कभी एक फिल्म का नाम भी पूरा ऑरा बदल देता है, पूरी एनर्जी लेवल को सेट कर देता है। सो अल्फा इज कमिंग टू योर वे एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट एंड द फिल्म रिलीजेस दिस फ्राइडे। एग्जैक्टली, मूड अल्फा ने सेट कर दिया है। मैं शो के फर्स्ट आर को बाय करने वाली हूँ। म्यूजिक की ग्लॉसी सफाई वाइब से निकल के मस्ती हैंगआउट के दूसरे आर में एंटर करेंगे एंड गेस व्हाट, वी विल बी वाइबिंग विद सम मूवी टॉक्स। पर ये मूवी टॉक्स वो मूवी टॉक्स नहीं है, नो, आप ड्राइव करो, आप काम करो, आप घर चलो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। अब

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक टू मस्ती हैंगआउट। पहले आवर में मूड वाज लाइक शाइनी एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ बाउंस, राइट? सफायर ने एनर्जी को एक बहुत ही ग्लॉसी लिफ्ट दे दिया, लेकिन अब शो का कलर थोड़ा चेंज होने वाला है बिकॉज इट्स फ्राइडे और हम शो के दूसरे आवर में हैं, तो मैं कुछ एवे तो करने वाली हूँ नहीं। म्यूजिक की चमक से निकलकर हम आपको दे रहे हैं सिनेमा के पावर जोन में एंट्री करने का मौका, राइट? मूवी टिकट्स नहीं बांट रही हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था मैंने। बॉलीवुड में कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनका नाम एक इम्पैक्ट लेकर के आता है। स्टोरी सुनने से पहले वाइब समझ में आ जाती है, द एटीट्यूड, द इंटेंसिटी, द प्रेजेंस और वो बिग स्क्रीन वाला पंच। एंड वन ऑफ देम वाज धू रन धर, है ना? वर्ड ही काफी है। नाम बोलते के साथ ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील आई थी, ऐसी वाली। ऐसा लगता है कि अब सीन सॉफ्ट नहीं होने वाला है, एनर्जी सेवेंथ मतलब सातवें आसमान पे जाने वाली, ऑन द सेवेंथ क्लाउड, और पावर इज गोइंग टू बी लाइक ओ माय गॉड। जी, मस्ती हैंगआउट का फ्राइडे एडिशन भी एग्जैक्टली वही कर रहा है, एक मूड से दूसरे मूड में शिफ्ट होना विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी हैवीनेस, प्योर एनर्जी, वो भी अनमैच्ड, जो ऐसी कि सुनते ही आप में धड़धड़ाते हुए एनर्जी भर जाए। एंड फ्राइडे इज ऑल अबाउट एनर्जी यार, सारा काम दरकिनार मतलब किनारे करके, लैपटॉप को कहीं साइड में रखे, फोन को थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट मोड में डाल के आप एकदम धुरंधर बन जाते हैं जिसके हाथ में अपनी लाइफ की लगाम होती है ना? धुरंधर के हाथ में उसकी लाइफ की लगाम थी, आपके भी हाथ में आपकी लाइफ की लगाम है। आज फ्राइडे है, कोई रोक नहीं सकता, लेट्स गो बेबी, आगे बढ़ेंगे। पर फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए, एंड कम बैक सून, क्योंकि मैं थकी नहीं हूँ। आज फ्राइडे है, मैं भी वापस आऊंगी अमेजिंग बातों के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज, आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: You are tuned into मस्ती हैंगआउट और आज का शो रेगुलर नहीं है, थोड़ा अपग्रेडेड है और मूड भी थोड़ा इट्स वाइबिंग राइट। अभी हम है धुरंधर जोन में, है कि नहीं? धुरंधर का फील इज वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट हम सब ने ये मूवी देखी है, सो वी नो द फील, है ना? स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, स्मार्ट मूव्स एंड द एनर्जी जिसको इग्नोर करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। वैसे इफ वी टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मूव्स और एनर्जी की बात, तो हमारे बॉलीवुड में कोई है जिसके पास ये सब कुछ है? यार धुरंधर वाले तो है ही, बट उसके अलावा भी कोई धुरंधर है, दैट्स खिलाड़ी अक्षय कुमार। प्रॉपर्टी गेम में एकदम धुरंधर मूव्स मार रहे हैं, वो हर जगह धुरंधर है भाई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार ने मुंबई के एक एरिया में दो लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है वो सेल किए एंड द टोटल डील वैल्यू वाज धुरंधर, इतना जानना काफी है। दोनों अपार्टमेंट्स जो है वो 18th फ्लोर पर थे और हर अपार्टमेंट के लिए इतने करोड़ रुपए मिले हैं उनको कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड यू नो व्हाट, दोनों के साथ 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड थी। एंड बस इतना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अक्षय ये दोनों अपार्टमेंट्स 2017 में कंबाइंड, ये बता देती हूँ, ओनली 9 crores में खरीद, तो समझ सकते हैं कि जब खरीदे इतने में थे तो बेचे कितने में होंगे, है कि नहीं? एक महीने में 4 अपार्टमेंट्स अराउंड लाइक मेनी मेनी मेनी crores एंड प्रॉफिट गेम एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। फिल्म स्क्रीन पर एक्शन अलग है, रियल लाइफ में प्रॉपर्टी एक्शन अलग है, भाई साहब ये तो धुरंधर है कि नहीं? एंट्री सॉलिड है, टाइमिंग सॉलिड है, मूव्स ऐसे कि मार्केट भी गएगा, बस खिलाड़ी तो आप है।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो एवरीबॉडी, फ्राइडे इवनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा आपके साथ मस्ती हैंगआउट का। फ्राइडे यानी फ्राइडे फीवर जो है वो जारी है। मूड लाइट है लेकिन एनर्जी धू रन धर। बॉलीवुड एक्शन या अगर हम पावरफुल सिनेमा के मोड में आ ही चुके हैं तो सिर्फ फाइट सीन्स नहीं लेकर के आता है, साथ में आता है पूरा एक रोल। एटीट्यूड इम्पैक्ट है कि नहीं, और कभी कभी वो एक रोल या एक्टर जो है वो पूरा करियर किसी ना किसी का चेंज हो जाता है। अब हम रोल्स की बात कर रहे हैं तो शाहिद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हाट इफ मोमेंट वापस से चर्चाओं में आ चुका है। शाहिद कपूर को रंग दे बसंती, उसमें ना करण सिंघानिया का रोल ऑफर हुआ था। वेल, वही रोल जो फाइनली फिल्म में सिद्धार्थ ने प्ले किया था। एंड द मजेदार पॉइंट है, शाहिद ने स्क्रिप्ट को पढ़ा, काफी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया। एंड ये भी सुनने में आया था कि वो स्क्रिप्ट पढ़कर बहुत इमोशनल हो गए थे। एंड पता नहीं व्हाई द रीजन लाइक टाइम इशू इन व्हाट फिल्म को हानि कर पाए, वो नहीं कर पाए वो फिल्म। बॉलीवुड का ड्रामा देखो, सेम रोल रिपोर्टेडली ऋतिक और अभिषेक के पास भी गए थे पर वो भी इस धुरंधर सिनेमा का हिस्सा नहीं बन पाए। फाइनली दैट रोल लैंडेड टू सिद्धार्थ। कहां कहां से होता हुआ कहां पहुंच गया, अलग ही लेवल पर ले गया उनके उनके एक्टिंग करियर को। अब आप सोचो बॉलीवुड के पहले यूनिवर्स में शाहिद कपूर रंग दे बसंती में होते तो क्या ही वाइब्स होती है, कभी सोच के देखा है? बट दैट इज द इंडस्ट्री फन। कभी एक रोल हाथ से निकलता है, कभी दूसरा रोल आपको धुरंधर बना देता है। शाहिद के साथ भी यही हुआ, उन्होंने बाद में कमीने, हैदर, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह ऐसे मल्टीपल रोल्स प्ले किए जिसमें आज भी लोहा मनवा रहे हैं अपने एक्टिंग का, है कि नहीं? सो धुरंधर एनर्जी का मतलब न सिर्फ एक फिल्म या एक्शन सीन नहीं होता है, कभी कभी इट इज अबाउट फाइंडिंग दैट रोल जहां पे एक्टर जो है वो सीन से ऊपर निकल जाए और फिर कहे कि ये मेरा है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1
3: और ग्रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
6: You are still with me on Musty Hangout, और आज का नया Friday edition जो है वो मूड को एक एक स्टेप करके ऊपर लेके जा रहा है with me of course. Sapphire, धुरंधर and धुरंधर को भी अब हम थोड़ा और add on करके shine लगाने वाले हैं। But एक Bollywood कमाल है, एक गाना आपके मूड को चमकाता है, एक फिल्म आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को उभार देती है, कभी कभी सॉफ्ट वाइब चाहिए होती है, कभी थोड़ा एटीट्यूड और कभी वो सिनेमैटिक पुश की हाँ अब सीन मेरे कंट्रोल में है। धुरंधर वाली एनर्जी हमको याद दिलाती है कि पावरफुल होना लाउड होना नहीं होता है, कभी कभी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, मस्ती हैंगआउट के इस फ्राइडे वाइब को सपोर्ट कर रहा है जीजी मार्ट। एंड व्हाई जीजी मार्ट? बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी पावरफुल चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इजी बना सकती हैं 100% गिल्ट फ्री करने के साथ, बिकॉज इनकी पैकेजिंग भी सस्टेनेबल है। यू नो जीजी मार्ट पर आपको कृषि फल जो है उसके नट्स की एक रेंज मिलेगी जो आपको गिल्ट फ्री मंचिंग दे सकती है। दे हैव अ होल बंच ऑफ रेंज ऑफ ड्राई फ्रूट्स, कैश्यूज, पिस्टैचियोज, आलमंड्स एंड व्हाट नॉट, यू नेम देम दे हैव देम। कृषि फल के ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो अवेलेबल है जीजी मार्ट पे, फ्रीक्वेंट मंचिंग सेशंस को इजी और गिल्ट फ्री बनाते हैं। फार्म फ्रेश है, सीधा धरती से निकल के आपके टेबल पर आपके सामने मंचिंग करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, 100% ऑर्गेनिक है ये, विद नो पेस्टिसाइड्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, मतलब खाइए और गिल्ट फ्री तरीके से इसको रख भी दीजिए क्योंकि सस्टेनेबल है। वैरायटी फुल ऑन है, मैकेडेमिया नट्स, रोस्टेड सॉल्टेड पिस्टैचियोज, हेजल नट्स, पम्पकिन सीड्स, असॉर्टेड पैक्स दे हैव फॉर यू, लाइक कैश्यूज, कैलिफोर्निया आलमंड्स, हर मूड के लिए परफेक्ट क्रंच, बिल्कुल हमारी तरह, बिकॉज हमारे पास हर मूड के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। और अब इसी पावर जोन के बाद शो का मूड फिर से शिफ्ट होने वाला है, बिकॉज शो का थर्ड आर आ चुका और मुझे पता भी नहीं चला। ट्रस्ट मी गाइस, आज का शो वॉज लाइक गरम छुरी ना मक्खन स्मूथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They were not chosen.
4: They were created. उसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: Alpha.
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
7: Alpha program उसका जुनून है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मस्ती हैंग आउट में फिर से स्वागत है। यस वेलकम बैक। जिन लोगों को लग रहा है ओह माय गॉड हु इज दिस, दिस इज मी मुग्धा। फ्राइडे को फ्राइडे फीवर लेकर के आपके साथ ऑन योर रेडियो सेट्स या कार रेडियो या हेडफोन ब्लूटूथ व्हाटएवर, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं मुग्धा। शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में शो का फाइनल स्ट्रेच हैज स्टार्टेड, वेयर द मूड एक्चुअली गेट्स अ लिटिल मोर बोल्ड, अ लिटिल मोर स्टाइलिश एंड अ लॉट मोर नाइट मोड। अब तक क्या एनर्जी फ्रेश थी, पावरफुल थी, लेकिन अब वाइब में ना थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा सा बैडी बैडी फीलिंग भी हम ऐड करने वाले हैं। Why? Because कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, वो पूरा एटीट्यूड लेकर आते हैं अपने साथ। आप उन्हें प्ले करो एंड सडनली यू फील लाइट्स थोड़ी डिम हो रही है, कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो गया है और मूड ने अपना कलर चेंज कर लिया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस की बात, तो एक चैलेंज भी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ म्यूजिक में नहीं नॉलेज में भी फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं। मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लाइन सिटी चैलेंज, सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विंस। अगर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल और ऑलराउंड अगर आपका हैपनिंग, जो थिंग्स आपके आसपास हो रही हैं, आप उसमें क्विक हैं, अगर आप वो पर्सन हैं जो क्वेश्चंस का जवाब सबसे पहले दे देते हैं, then this is your moment. The first step is to qualify for the show. आपको बस दो सवालों के सही जवाब देने हैं और आप एक स्टेप क्लोजर हो सकते हैं द लाइन सिटी चैलेंज में अपीयर करने के लिए, विद एक्साइटिंग कैश एंड प्राइजेस अप फॉर ग्रैब्स। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लिखकर भेजना है LION टू द नंबर 9151 8963। आप जैसे ये काम करेंगे, हमारी टीम आपको अगले स्टेप्स के लिए खुद ही गाइड करेगी। एंट्रीज विल बी क्लोजिंग ऑन संडे जुलाई 2026, सो डोंट जस्ट लिसन टू द चैलेंज, be a part of it. Text line to 9151 8963 and let's see ki Singapore ka smartest mind kahin aap to nahi. Wapas aate hain mood par, because aaj ka masti hangout naye feel ke saath chal raha hai. No stress, no heavy talk, just music, happy hill, cute and light mood hai aur thoda filmy escape hai. Ab jo gaana aane wala na exactly wahi zone hai. It's bold, smooth, stylish, pure

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: Hello everybody, you are listening to Radio Masti 24/7 live. Yeh hai Masti Hangout, Friday vibe in chal rahi hai. It's Friday and mood hai full glam zone mein. You know, all the rangs are here. Besharam rang. You know what? It's not about just glamour. Confidence wali vibe lekar ke aata hai. Apne mood mein rehne ka, apne color ko own karne ka. How? Confidence. और अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो somebody's here जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त स्काई हाई है। दिशा पाटनी का रीसेंट थॉट जो है बिल्कुल फिट बैठता है हमारे इस गाने के मूड पर। वेलकम टू द जंगल जो है उसके लिए काफी प्रेजेस उनको मिल रही हैं। दिशा ने अपनी जर्नी जो है रिफ्लेक्ट किया है, बिना किसी बैकग्राउंड और कनेक्शन के वो मुंबई आई थी एंड सबसे बड़ा लेसन था बिलीव इन योरसेल्फ, सबकी सुनो, करो वही जो दिल करे। प्योर बेशरम रंग वाली एनर्जी, सिंपल द स्टाइलिश एंड सेल्फ ओन्ड, है कि नहीं? दिशा ने अपनी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बताया है। ऑल द रंग्स आर देयर, गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स, और अब है आवारा पंटू इन द लाइन, राइट? और हॉलीवुड डेब्यू भाई, द पोर्टल ऑफ फोर्स में उनका ये रंग तो किसी ने देखा ही नहीं था।
4: जा, झूठ तेरे इरादे हैं, जा, शौक तूने जो पाले हैं।
3: So, glamour हो या life, confidence तभी दिखता है जब आप अपना color खुद carry करते हो। That's Besharam Rang. Here's the song, another one, stay tuned.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बैक ऑन मस्ती हैंगआउट। मूड है एक और बेशरम रंग जोन में जाने का, मतलब अपना कलर, अपना स्टाइल, अपनी वाइब बिना ऑकवर्ड हुए कैसे कैरी करें, ऐसे यू नो। ये मूड परफेक्टली कनेक्ट करता है हमारी प्यारी अंजलि आनंद से। यू हैव सीन हर इन रॉकिंग रानी की प्रेम कहानी एंड नाउ अमेजिंग दिख रही है विद रितेश। अंजलि का करियर ना बड़े बज में रहा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद। उन्होंने डब्बा काटल, राजजवा है, ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए उन्होंने एंड अब वो धमाल 4 में दिखाई देंगी। उनका गुलाबी साड़ी वाला जो गाना है ना, इट्स वायरल भाई रितेश के साथ। पर इन सारी चीजों के बीच में, सक्सेस के बीच में, काफी सारे रंग उन्हें लोगों के देखने को मिले। ऑल दैट बॉडी शेमिंग ट्रोल्स, काफी सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें। अंजलि ने बताया कि लोगों ने बॉडी के साइज को लेकर बहुत से टॉन्स दे रहे थे, मैसेजेस करते थे, ट्रोल करते थे और सवाल था कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग आपको काम दे रहे हैं। एंड देन अंजलि रिप्लाइड इन हर ओन कलर्स, मुझे काम मेरे काम की वजह से मिल रहा है, साइज की वजह से रिजेक्ट होना इज नॉट द रूल। ऑनेस्टली दैट इज अ प्रॉपर बेशरम रंग एनर्जी। यू गो गर्ल, नॉट लाउड, नॉट डिफेंसिव, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि ग्लैमर का मतलब एक फिक्स बॉडी टाइप नहीं होता है, स्क्रीन प्रेजेंस का मतलब होता है जब आप फ्रेम में आओ तो आप दिख रहे हो, आपका अपना कलर लेके आ रहे हो, है कि नहीं। अंजलि का भी यही कहना है कि वो वाइब देती हैं, अपनी लाइफ की मेन लीड है वो और यही बनेंगे तब आएगा लाइफ में कलर। यू नो, खुद की हीरोइन बनो और अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करो हमारी करीना की तरह। सो बेशरम रंग का फील यही है रियल लाइफ का, अपना कलर हाइड मत करो, उसको कैरी करो स्टाइलिशली, कॉन्फिडेंटली और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। You go girl, we are with you. गुलाबी साड़ी। Okay, फिलहाल अगला ट्रैक आपके लिए।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
4: ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
5: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
6: Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey all and welcome to the final stretch of Masti Hangout. आज का नया फ्राइडे मूड अब अपने लास्ट कलर में आ चुका है। आई होप ये सारे कलर्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। द फर्स्ट आवर वॉज ऑल अबाउट शाइनिंग सफायर। सेकेंड आवर में हम एकदम पावर पैक परफॉर्मेंसेस दे रहे थे हमारा एंकर मूवी धुरंधर, राइट? एंड बेशरम रंग ने हमारे शो को एक क्लोजर दिया, एक शो को फिनाले टच दिया, दैट स्मूथ, दैट बोल्ड, दैट कॉन्फिडेंट, फुल नाइट मोड वाला, है ना? फ्राइडे नाइट का बेस्ट वर्जन पता है यही होता है। वीक का वेट पीछे रह जाता है, मूड थोड़ा हल्का हो जाता है और आप अपने तरीके से शाम को जीते हैं। कोई हैवी बात नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा सोच नहीं होती है, कोई प्रेशर नहीं होता है। अच्छे गाने, अमेजिंग गाने, अच्छा मूड एंड थोड़ा सा आपका अपना रंग, बिकॉज देयर इज नो बर्डन यू आर कैरिंग अराउंड। कुछ नहीं है आपके सर पे, आपके कंधों पे। आज का मस्ती हैंगआउट जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता है, वीकेंड को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, बस उसे अपने मूड के हिसाब से जी लीजिए। यस, कीप योर एनर्जी ब्राइट, योर वाइब स्टाइलिश एंड योर रंग कंप्लीटली योर्स। विद दिस नोट मुग्धा से इज यू बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते विद सम न्यू रंग मस्ती हैंगआउट में। टिल देन टेक केयर, हैव एन अमेजिंग वीकेंड।
2: ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए।
1: बाय।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से मिलाएं हिंदुस्तान को क्या।
1: डाले डाले डाले।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. It's the best of Bollywood playing on Radio Musty 24/7 live. Have a musty bhara weekend.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमे जते.
2: नदी जमे जते. आह, इट्स सो सेक्सी.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me
0: raho. Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aap.

0: चाहिए।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से,

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी है?

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.